वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

0: We now offer you a recital from the Sikh holy book, the Guru Granth Sahib. One of the profound messages of this holy scripture is the unity and equality of humanity. As one verse states, "Look upon all with equality, and recognize the Supreme Soul, the Lord, pervading among all."
1: तन आसरी तनवंती जानिया पाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौपे जी सौ पाई लय हुकुम फिराओ जय बैसा मैं बैसे पाई जय भेजे तै जाओ एवड तन होर को नहीं पाई जेवड़ सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा पाई सदा सच्चे कै संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईयां पाई अपनी पत के साध आपे खाए तिसका क्या साला ही है पाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वड़ियां वड़ियाईयां पाई कर्म मिलैता पाए एक हुक्म मानना जाननी पाई दूजे पाए फिर आए संगत टोई ना मिले पाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुक्म तिन्ना मनाए सी पाई जिन्ना तुरे कमाया नाओ तिन विटा हो वारिया पाई तिन को सदबलिहार रह जाओ से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन अनदिन सेवन गुरे अपना अनदिन अनद रहन नानक से मोह सोहणे सच्चे दर दे सन मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाहे सच्चा शब्द मन वसिया सतगुर माए समाहे सच्ची रासी साहिता ने उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगह बैसना सच्चे माहे समाए नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मनमुख भूले जाहे बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निध प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार ते चुकै सहज उपजै चुकै कुक पुकार नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो और तार बाबीहा तू सच चाओ सच्चे सौले वलाए बोलिया तेरा थाए पवै गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तखि उतरै मन लहर जाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवै सहे सुभाए जल ही ते सब उपजै बिन जल प्यास ना जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख ना लागै आए बाबीहा तू सहज बोल सच्चा शब्द सुभाए सब किश तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले उठा शैबर लाए चिम चिम अमृत वरसदा तिसना भुख सब जाए कूक पुकार ना हो वई ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चा नाम समाए तुरो खसम भेजिया सच्चा हुक्म पठाए इंद वरसै दया कर गूड़ी शैबर लाए बाबी हे तन मन सुख होए जा तत् बूंद मोए पाए अन तन बहुता उपजै धरती सोभा पाए अंदन लोग भगत करे गुर कै सब समाए आपे सच्चा बख्श लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चा शब्द समाए पै का सहज सिंगार करो सच रहो लिवलाए नानक नामो मन वसै हर दर गैले छडाए बाबी हा सगली धरती जे फरै ऊड़ चढ़ै आकाश सतगुर मिलिया जल पाईऐ चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसकै पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आगै कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे प्रगास नानक तसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर उठा मंतन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जे तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सरिया सब कोए नानक तना बसंत है जिन्ना गुरमुख वसिया मन सोए हर उठै मंतन परफड़ै सब जग हरिया होए वडलै चाल चलुंबलै ना वड़ा लईऐ किस नाव लईऐ परमेसरै भरण करण समरथ हर हट पी तू तू करै बोलै भली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करै पुकार जिन जगतो पाए हर रंग किया तसै विटो कुरबान आप छोड़ै ता सह मिलै सच्चा हो विचार हौ मैं फिका बोलना बुझ न सका कार वन त्रैण त्र पवन तुझै ते आएदा अंदन सदा विहान बिन सतगुर कने ना पाया कर कर थके विचार नदर करै जे अपनी ता आपे लै सवार नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से प्रमाण ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਪੇਟੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਭਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ, ਮਨਮੁਖ ਸਭ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੋਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਭੁੱਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਖ ਉਤਰੈ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸਨੋ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹੇਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦ, ਵੰਦਨ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਬਹੁਣ ਨਾ ਮੰਤਰ ਭੰਗ, ਮੂੰਹ ਪਿਰਿਆ ਸੋਨੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ ਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ